0: आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर मंडपा कशारदा का कर्नाटक शैली में गायन।
1: गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वोकल रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर मंडपा कशारदा।
0: श्रीमती विनया और श्री कृष्णमूर्ति की बेटी डॉक्टर मंडपा कशारदा ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा गुरु श्री आईवीएल शास्त्री के पास प्राप्त की। तत्पश्चात श्री कोमंडेरे कृष्णमाचार्यों के पास आपने संगीत की बारीकियां सीखी। 8 वर्ष के अल्प आयु से ही डॉक्टर शारदा अपने कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। पत्नम सुब्रमण्यम अय्यर की रचनाओं पर आपके शोध कार्य हेतु आपको पीएचडी प्रदान किया गया है। आप आंध्र विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त रही हैं। पिछले 60 वर्षों से डॉक्टर मंडपा कशारदा कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपने कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। आपको कई संस्थाओं द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मंडपा कशारदा को आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय संगीत गायन में ए ग्रेड और सुगम संगीत में बी हाई ग्रेड प्राप्त है और आप ग्रेड 1 कंपोजर भी हैं।
1: Born in Vijayanagaram to Srimati Vimala and Sri Krishnamurti, Dr. Mandapa Kasharada was initiated into music at an early age. She received her initial training in music under Sri IVL Shastri and later honed her skills under the guidance of Sri Komandiri Krishnamacharilu. Dr. Mandapa Kasharada received her PhD degree for her thesis on the compositions of Patnam Subramaniam Iyer. She served for several years in the Department of Music of Andhra University. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan in Carnatic music and Behai in light music, she is also a grade 1 music.

0: music composer. Dr. Sharada has performed more than 3,000 concerts in classical, devotional and light music in several platforms all over the country. She is also the author of two books, Swara Tarangini and Kriti Manjari. Dr. Mandapaka Sharada is the recipient of a number of awards and felicitations.
1: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर मंडपाका शारदा की संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सरस्वतुला हनुमंत राव
0: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट डॉक्टर मंडपाका शारदा इज अकॉम्पनीड बाय श्री महादासु नीलाद्री राव ऑन द वायलिन श्री सुसरापु सुब्रमण्यम ऑन द मृदंगम एंड श्री सरस्वतुला हनुमंत राव ऑन द घटम
1: डॉक्टर मंडपाका शारदा आज के कार्यक्रम का आरंभ करती हैं बेगड़ राग में संत त्यागराज की रचना भक्तुन चारित्रमु से जो कि आदि ताल में बद्ध है
0: डॉक्टर मंडपाका शारदा बिगिंस हर प्रेजेंटेशन विद भक्तुन चारित्रमु अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराजा इन बेगड़ रागम आदि तालम

0: दीपाकर शारदा की अगली प्रस्तुति है माया मालव गौल राग में श्याम शास्त्री की रचना नीलायताक्षी जो कि मिश्र चापू ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Shyama Shastri in Maya Malava Gola Ragam Misra Chaputalam.

0: अब सुने शुद्ध कन्यासी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना श्री पार्थ सारथी जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: We will now listen to Sri Partha Sarathi. It is in Suddha Dhanyasi Ragam, Rupak Talam, and is a composition of Muthuswami Dikshitar.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर मंडपा का शारदा का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादास नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसराप सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सरस्वती हनुमंत राव। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर मंडपा का शारदा प्रस्तुत कर रहे हैं कल्याणी राग में पल्लवी गोपाल अय्यर की रचना मेघ चरण पंकज मुले, जो की आदिकाल में निबद्ध है।
1: In tonight's national program of music, you have been listening to a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapaka Sharada. She is accompanied by Sri Mahabasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumanth Rao on the ghatam. Continuing her performance, Dr. Mandapaka Sharada will now present a composition of Pallavi Gopalayar in Kalyani Ragam Adi.

0: यह था कन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री सुसराप सुब्रमण्यम ने और घटम पर श्री सरस्वती हनुमंत राव ने। डॉक्टर मंडपा का शारदा आज के कार्यक्रम का समापन वृंदावन राग में डॉक्टर मंगलम पल्ली बालमुरली कृष्णा द्वारा रचित तिल्लाना से कर रहे हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Sri Susarapu Subramaniam and on the Ghatam by Sri Saraswatula Hanumanth Rao. Dr. Mandapaka Sharada concludes her this evening's presentation with the Tillana of Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Vrindavana Ragam Aditalam.

0: के अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत अभी तक आप डॉक्टर मंडपा कशारदा द्वारा कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे वायलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसराप सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सरस्वती हनुमंत राव। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapa Kasharada. She was accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatila Hanumant Rao on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani, Vishakhapatnam.